0: चलन चलो हमारा बैंक को हमारा रूम ना जा जा इन जो फुली रूम कर को जन रहने ना मस्त ओपन को वर्षा ने ट्रांग के कुसंग उस को बोला है अब नॉर्मल दस वन को अच्छा गाना ना आयो ले उन कुसंग उस ले यो वे आइलैंड चले यो चंद रहने गए किंग आज डिंग आ मत ट्रैफिक कॉप किंग आज डिंग आ इस पीड़ कॉप किंग आज डिंग आ मत पॉइंट्स आ ऐसे में चेंट को ना स्कोर अपोगे जिन असंग को मैंने कमला मैंने गाया बंदी में गई बा सुबह सिप कहला इन चालो इन जाई जीवा यो ना ऐसे को हम कल मुसारे फ्लैग की रहित सियाम बस्या गुम कुलुशिंगा ऐसे लेकर मुकुल मस्को हम कलो चलो निश्चित पुलिस मस्को हम कहे लफ़ोंडीन
1: गिग बिंगे ले ले कैसा लामिंग बिले ना वो बोंग के आबाले बेस लोम जान तुम उख़ुआ शुआ ना गो आबो हाय आबाने हे बोलो लोम क्वा कोलो
0: आई लो
1: आई लोम क्वा मस्तोपिन को आगो मस्तोपिन को
0: तो दांगे आज क्या वाला मुकुल मस्को को ना ना मैं फिगी ले कुए उम्रोटे मुकुल आई ने एक आई टिंगा इंगुआ टिसो बाद यहाँ पे का क्लोम क्वा
1: गुंजालो yenziwa nangomona womuntu othi mina ngifisa ukubona umshado walapha uphumelela
0: akhona ngamabuma ama shop and go
1: hey hey khehla lami umuntu akugcishe ngaye ngeke ama shop and go uhlala isikhathi ethi have ayi khehla lami ngaye ngafica umuntu stop and go ngaphuma ngaze ngacisha imoto ngawohlala ngaphandle ngihadla ngaze ngaqeda ngenza yonke into kwayemanga so ngabona uthange u stop and go nje empilweni awudingeki
0: and futhi ke ukhona obhalwayo ba mhlambi 30 minutes or mhlambi 10 minutes or mhlambi I hour or mhlambi 2 hours nokushesha uyibheka mkhulu look at that look at that ngiyakuphaza mina
1: ngibabingelele nje vele sengibingelelile ngomkhulu shinga ngiqhamuka khona abashinga medi abanye bethu hayibo kwathiwa mkhulu kodwa ayengeke ivoice ayishi ikhehla kahle bezulu mzansi ngaswe ngangenwa amathongo noma zithu ngezathi indodana awuhambi yolekelela abantu ahambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo ezimpini ababhekene nazo ko must stop and go ababhekene nawo nawo yonke into ukubalekela ukuthi at least impilo yabo ayike ithi ukuba smutana ngabe njalo nje sekube igravel unuka impilo yakhe ihamba kancane kancane amaphotholo empilo kunzima nje kuwe cha ngithi mina ungabe ukuvumela lokho at least awuzama ukuthi impilo yakho mabe yabo ukuthi ithanda ukubanzinyana igravel imgodi ngemgodi nemsele akuzama ukuthi at least uyishintshe uyenze ibe yitiyela utholele amaphotho lapho nalapho lapho nalapho ungabe nje wona impilo yakho sekuyabhedi kodwa ngasho ukuthi abanendlebe bazwile kodwa ngizophinda futhi ngizonaba nginginabiseni ngeke ngithi mina akugweme ukushona phansi kwempilo yakho akugweme ukuwa kwempilo yakho akuyigweme izinto nje ezofika nje zizokuvimbela impilo zizokuvimbela indlela eyaphambili.